एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये अलबेली प्यार की राहें। कहना तो बहुत आसान होता है कि निकलो अपनी समस्याओं से बाहर, कहना तो बहुत आसान होता है कि निकलो अपनी समस्याओं से बाहर, बेड़ियां पैरों में हो तो कोई भी तोड़ दे, बंधन दिलो दिमाग के तोड़ना इतना आसान नहीं होता। 5:42 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अलचित के साथ।

5:50 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। वंदे मातरम।

0: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఎఫ్ఎం రెయిన్బో. రెయిన్బోతో జీవితం రంగులమయం. నిలయంలో సమయం 5:59 దాటి 55 సెకండ్లు. 6 గంటలకు హిందీలో వార్తా ముఖ్యాంశాలు, తదుపరి 6:05 ఆంగ్లంలో వార్తా ముఖ్యాంశాలు వింటారు.
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9

0: सकता है।
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां आज मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति लेकर आई हूं आपके लिए बहुत सारी बातें पी का पी में, यानी कि प्रीति के पिटारे में। पर उससे पहले आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ, तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आइए जल्दी से सवार हो जाइए अपने अपने फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में, ताकि हम यहाँ से कुछ समय के लिए, नहीं, कुछ ज़्यादा समय के लिए आप हम साथ रहने वाले हैं आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए।
1: మీ సొంతింటి కల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ తో మీ సొంతింటి కల ఇప్పుడు మరింత సులభం. ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటు కేవలం 7.20%, సులభమైన ఈఎంఐలు ప్రతి లక్షకు కేవలం 679 రూపాయల నుంచే ప్రారంభం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రోజే మీ సమీపంలో ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ను సంప్రదించండి. మీ సొంతింటి కలకు బలమైన ఆర్థిక తోడ్పాటు.
0: और दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रेनबो एफएम 101.9 आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल पी का पी यानी कि प्रीति के फिटाने में ज्ञानचंद जी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, है ना। तो एक बार ना ज्ञानचंद जी ने पूछा कि अरे प्रीति, वो कौन सी पत्नियां होती हैं जो पतियों के इशारों पर नाचती हैं? वरना श्रीमती ज्ञानचंद जी जो है ना, वो तो कभी गाने पर भी नहीं नाचती है। मैंने कहा, ज्ञानचंद जी, उन्होंने शायद रेनबो एफएम नहीं सुना होगा, वरना रेनबो एफएम पर तो अच्छे अच्छे अपने अपने गानों पर थिरकना शुरू कर देते हैं ना। तो

साथियों, आप भी यदि कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर गीत किसको डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232342। स्टे ट्यून, चलिए चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे।

तो साथियों, आप तैयार हैं लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए? क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर ज्ञानचंद जी अपने बहुत सारे अनुभव बांटने वाले हैं, ऐसे उन्होंने मुझे बताया है। पर उनको अपने लाइफ में आप अपनाना है या नहीं अपनाना है, वो आपकी अपनी रिस्क पे, ओके ना? वरना कल आके मुझे मत कहिएगा कि ज्ञानचंद जी ने ऐसे कहा था। जो भी कहना है ज्ञानचंद जी के साथ अपना मैटर सेटल करने का। तो चलिए, अब सवेरे सवेरे के समय में आप फिट रहने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन क्या रस्सी भी कूदते हैं? यदि हाँ साथियों, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रस्सी कूद, जिसे आप स्किपिंग या रोप जंपिंग के नाम से भी जानते हैं, वो ना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही किफायती तरीका है। परंतु ज्ञात रहे साथियों कि रस्सी सदैव खाली पेट ही कूदें, और जहां तक हो सके सवेरे का ही समय चुनें, क्योंकि ये समय इस क्रिया के लिए अधिक लाभप्रद है, ऐसे मेरा नहीं बल्कि विशेषज्ञों का कहना है। इसके अलावा आप रस्सी कूदते समय वस्त्र चाहे जो भी पहने, पर वे खुले एवं आरामदायक हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और विशेषज्ञों की माने तो रस्सी कूदने से पहले कुछ हल्के व्यायाम भी कर लें, ताकि मांसपेशियों के कसाव में जो कसाव होता है, जो टेंशन होता है, वो कम हो और उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और वैसे हम तो चाहते ही कि हैं आप हमेशा ही फिट रहे, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी तो आप अपने पसंदीदा गानों पर थिरक पाएंगे, है ना? तो चलिए, जब आप और हम मिलते हैं तो भाई मौज तो वैसे ही होनी है ना।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours।
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब आपकी धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति के साथ। और आगे बढ़ूं तो ना ज्ञानचंद जी बता रहे हैं कि उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि ये पत्नियां जो होती हैं ना वो अपने पति से पहले भोजन क्यों नहीं करती हैं। तो मैंने कहा कि भाई ज्ञानचंद जी वो तो अपनी पत्नी मतलब जिनकी भी पत्नियां उनका प्यार है वो इसीलिए। तो ज्ञानचंद जी ने कहा ऐसा नहीं है। तो मैंने पूछा कैसा है, तो इस पर पता है ज्ञानचंद जी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिक जब भी कोई दवाई बनाते हैं ना तो वो ना बंदरों पर परीक्षण करते हैं ना। अब आप समझ ही गए होंगे, खैर मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्ञानचंद जी भी वही कहते हैं जो चिचा कहते थे कि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं ना। वैसे साथियों सवेरे का समय और ज्ञानचंद जी खाने की बात कर रहे हैं, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रस्सी कूदने के तुरंत बाद ना तो कुछ खाएं और ना ही कुछ पीना है, पानी या फिर अन्य पेय पदार्थ भी ना पिए। रस्सी कूदने और कुछ खाने या पीने के मध्य कम से कम जो है 15 से 20 मिनट का समय जो है अवश्य रखें। और हाँ, आपको रस्सी कूदते समय फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रारंभ में रस्सी कूदने की गति धीमी ही श्रेयस्कर है और शुरुआत में थोड़े समय के लिए ही रस्सी कूदें और फिर धीरे धीरे गति और सीमा बढ़ाएं ताकि आप भी थके नहीं और निरंतरता भी बनाए रखिए। और यदि आपका पैशन ही है तब भी आपको ऐसा मेंटेन करना चाहिए, ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। जब बात पैशन की चल ही रही है तो चलिए गीत भी पैशन का ही हो।

यस साथियों, तो आपने ट्यून किया रेन में FM 101.9 पर और मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में आप हैं। और आज जो है बॉलीवुड के तानसेन कहे जाने वाले संगीतकार नौशाद अली साहब की पुण्यतिथि है। साथियों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 दिसंबर सन 1919 यानी कि 26 दिसंबर 1919 को जन्मे प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अली साहब ना हिंदी सिनेमा के सुनहरे हस्ताक्षर थे। अपने शानदार क्लासिकल संगीत से उन्होंने बॉलीवुड को कई दिल छू लेने वाले गीत दिए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नौशाद का अर्थ जो है ना वो खुश या प्रसन्न होना होता है और अपने गीतों से उन्होंने ये खुशी और प्रसन्नता ही बिखेरी है। ऐसे महान संगीतकार को उनकी पुण्यतिथि पर नमन है। नौशाद साहब 5 मई सन 2006 यानी कि 5th ऑफ मई 2006 को संगीत जगत को रोता बिलखता छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद जो शून्य पैदा हुआ वो आज भी नहीं भर पाया है। हालांकि उन्होंने फिल्मों का सैकड़ा भी पार नहीं किया। जी हाँ साथियों, उन्होंने मात्र 67 फिल्में यानी कि 67 फिल्म्स में ही उन्होंने अपना संगीत दिया था, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता जो थी ना वो इस कदर है कि आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर वो राज करते हैं, है ना। तो चलिए, जब बात नौशाद साहब की हो रही है तो भाई गीत भी उन्हीं का हो, है ना। तो साथियों, वैसे यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222। स्टे ट्यून्ड।

यस साथियों, आपने ट्यून किया है एफएम 101.9 और जहां पर मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में अभी हम बात कर रहे हैं नौशाद साहब की। जी हां साथियों, नौशाद अली साहब को लेकर ना कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि नौशाद साहब की शादी में उनके ही गाने की धुन बजाई जा रही थी। अब यहाँ तक तो ठीक है साथियों, पर मजे की बात यह है कि उनके घर वालों को ही नहीं पता था कि नौशाद साहब जो है संगीतकार हैं और वो फिल्मों में गाना कंपोज करते हैं। अब नौशाद के ससुराल वाले जो है ना, वो उन्हें टेलर समझते थे। साथियों, ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करना ना अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए नौशाद साहब के पिता, जो खुद मुंशी का काम करते थे, वो संगीतकार के ससुराल वालों को जो है ऐसे उन्होंने बताया कि नौशाद एक टेलर है। और इस बात से नौशाद साहब ने भी अपोज नहीं किया, मतलब

उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, चुपचाप हामी भर ली। अब शादी के दिन जब उनकी बारात जाने लगी ना, तो बैंड वाले उनकी ही फिल्म रतन के गानों की धुनें बजा रहे थे। जी हाँ, कहा जाता है कि उनके ससुर और पिता जो थे, उन्हें उस समय नहीं नहीं पता था कि ये नौशाद साहब जो है संगीतकार हैं, और वो जो है संगीतकार को, मतलब वो जो धुन बजा रहे थे उस धुन के संगीतकार को कोस रहे थे कि फिल्मों में किस तरह का संगीत दिया जाता है। मगर साथियों, नौशाद साहब ये भी नहीं कह पाए कि ये संगीत उन्होंने ही तैयार किया है। कैसी मुझे विडंबना रही होगी, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं साथियों जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, बट लेट्स टर्न द कार्ड्स स्लोली। जी हाँ, व्हाट डू यू से, क्या कहना है आपका?

और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, जहां पर आज फिलहाल हम बात कर रहे हैं नौशाद अली साहब की। जी हां, महान संगीतकार नौशाद अली साहब की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। साथियों, नौशाद साहब को जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए सर 1981 और 1992 यानी कि 1981 और 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नौशाद अली साहब संगीत की दुनिया में आए दिन जो है नए आयाम स्थापित करते थे। उस जमाने में टेक्नोलॉजी के बिना ही उन्होंने संगीत में एक से बढ़कर एक साउंड इफेक्ट्स का उपयोग किया था। यही नहीं, नौशाद साहब ने फिल्म मुगले आजम में भी अपनी तकनीक से लोगों को हैरान कर दिया था। जी हाँ साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने मुगले आजम के गीत ए मोहब्बत जिंदाबाद के लिए कोरस पार्ट के लिए 100 म्यूजिशियंस का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, 100 म्यूजिशियंस। यही नहीं, मुगले आजम में प्यार किया तो डरना क्या, याद आया कुछ, प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ साथियों, इस गीत में ईगो इफेक्ट लाने के लिए नौशाद साहब ने लता मंगेशकर जी को बाथरूम में खड़े होकर गाने के लिए कहा था। है ना खास बात, मतलब वो ऐसी ही चीज़ों से नई चीज़ें लाया करते थे अपने गीतों में। तो चलिए, जब बात मुगले आजम की और इस विशेष गीत की चल रही है जिसके लिए लता मंगेशकर जी को, जी हाँ, सुर साम्राज्ञी, स्वर्गीय सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को बाथरूम में खड़े होकर गाने के लिए कहा गया था, उसी गीत को सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आपने ट्यून किया रेन एफएम 101.9 पर और मैं आपके धड़कनों पहुंची थी आरजे प्रीति, जो पी का पी यानी कि प्रीति का पिटाना लेकर आए उसके हम दूसरे स्तंभ में पहुंच गए हैं। नमस्ते, हेलो, आदाब में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल ज्ञानचंद जी का ज्ञान। तो भाई साथियों, एक बार ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ना, मतलब उनको बहुत गुस्सा आया था, कुछ बात हो गई थी ज्ञानचंद जी और श्रीमती ज्ञानचंद जी में कुछ झड़प हो गई थी। तो श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि ज्ञानचंद जी, ये आप हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लेके आ जाते हो। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि श्रीमती जी, जब कोई टीवी खराब हो जाता है तो क्या हम टीवी को थोड़े ही ना बोलते हैं, हम तो कंपनी वालों को ही गालियां देते हैं ना, बस वही बात है, समझ जाइएगा। अब उसके बाद में क्या हुआ ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि हमेशा क्या कहते हैं ज्ञानचंद जी, जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। वैसे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ज्ञानचंद जी आपके साथ साझा करना चाहते हैं, पर फिलहाल आप ही में से आप ही की फरमाइश इस प्यारे से गीत की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसको डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232342। स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि आज कैसे आ गए, तो साथियों

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರು ಅದ್ಭುತಮೈನ 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
2: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయోవృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
1: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
0: FM Rainbow 101.9.
3: नमस्ते, हेलो, आदाब. मैं हूं आपकी आरजे श्रिया और आप सुन रहे हैं रेनबो एफएम 101.9. सबसे पहले आज कैलेंडर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है. आज है इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हाथ धोना तो बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है. अब देखो, हमारे लिए हाथ तो का कनेक्शन सीधे दिल से होता है, चाहे वो माँ के हाथ का खाना हो या दोस्तों से वो हैंडशेक. पर एज पर एक्सपर्ट्स, यही हाथ हमारे सेहत का रिमोट कंट्रोल भी है. आज का दिन बस एक जेंटल रिमाइंडर है

कि हम अपनी सेफ्टी अपने हाथों में ही रखें। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इसी बारे में, और अभी आप सुनेंगे एक प्यारा सा गाना, उसके बाद हमने एक टॉक कंटिन्यू करेंगे।

0: ఒక్క శ్రీ చైతన్య నుండి
1: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
2: सो वेलकम बैक. हम बात कर रहे थे हैंड हाइजीन के बारे में, और ऑनेस्टली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटी सी हैबिट है. मेडिकल प्रोफेशंस सजेस्ट करते हैं कि जब भी हाथ धोए तो कम से कम 20 सेकंड का वक्त ले. अब 20 सेकंड सुनने में लगता है कि भाई इतनी देर, पर सोचो इतना टाइम तो हम सोशल मीडिया पर स्क्रोल करने में लग जाते हैं. तो अपने लंग्स और स्टमक के लिए 20 सेकेंड्स तो निकाल ही सकते हैं ना. और रिमेम्बर, जर्म्स को बाय बाय बोलना है तो साबुन से दोस्ती तो करनी पड़ेगी. स्ट्रेस भी कम और जर्म्स भी ख़त्म. अभी हम सुने

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: सो वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, मैं हूं आपकी आरजे श्रिया और आप सुन रहे हैं रेनबो एफएम 101.9। तो हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे पे हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना खाने के बिना तो कुछ बात पूरी होती ही नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाना मतलब उन सब जर्म्स को खाम का इन्विटेशन देना, क्योंकि हमारे हाथ दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ हम सर्फेसिस को टच करते रहते हैं, चाहे वो लिफ्ट के बटन हो या फिर फ़ोन हो, कीज हो, ऑफिस के फाइल्स हो या फिर कोई कॉफ़ी मशीन या फिर कोई वाटर डिस्पेंसर भी। तो बस एक सिंपल सा रूल है, खाने की प्लेट उठाने से पहले साबुन से दोस्ती करना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, आजकल हम अपने दोस्तों से ज़्यादा फ़ोन से टच में रहते हैं, सुबह से रात तक फ़ोन हमारे साथ रहता है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन पर काफ़ी बैक्टीरिया हो सकती हैं क्योंकि हम उसे हर जगह कैरी करते हैं। दे सजेस्ट कि हाथ साफ करने से करना ही फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जब हम हमारे हाथ साफ रखते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखते हैं। इट्स ऑल कनेक्टेड दोस्तों। सो आप ऐसे हाथ धोते रहिए और हमेशा अपने को सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। तो अभी हम सुनेंगे एक गाना, उसके बाद और बातें करेंगे।

0: फैन तो अब आप आरजे श्रिया के भी हो गए होंगे, है ना, जो इतनी प्यारी प्यारी बातों से आपको लुभा जो रही है।
1: FM Rainbow 101.9
2: और सलाह दिलाती, दलीला हमें सही राह दिखाती।
1: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: FM Rainbow 101.9

0: सो वेलकम बैक। सो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल हाइजीन डे, हैंड हाइजीन डे पर। सो देखिए, हम 2026 में डिजिटल डिजिटल हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, पर बेसिक वही, यानी माँ के खाने से पहले हाथ अच्छे से धो लेना वाला रिचुअल। सो हैंड हाइजीन कोई एक दिन का टास्क नहीं है, ये तो एक लाइफस्टाइल है और एक इजी और अच्छा तरीका है खुद को फिट रखने का। सिंपल, हाथ धोना आपके परिवार को बड़े मेडिकल बिल से बचा सकता है। एज पर एक्सपर्ट्स, हैंड हाइजीन इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी यू कैन एवर हैव। तो चाहे कितनी भी जल्दी हो, लेट्स नॉट स्किप द सोप। स्वस्थ रहिए, साफ रहिए और अपने स्माइल को कंटेजियस रखिए, जर्म्स को नहीं।
1: यस, परफेक्ट श्रेया, बहुत अच्छी बात आपने हेल्थ हाइजीन, हैंड हाइजीन के बारे में बताई है। बहुत अच्छे, परफेक्ट।
2: I found a love for me।
1: साथियों, जब श्रेया परफेक्ट है तो सॉन्ग भी परफेक्ट होना चाहिए, है ना?

0: FM Rainbow 101.9 తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి
1: 300కి 300 మార్కులు సాధించిన
2: దేశ మొత్తంలో ఒకే ఒక్కడు
3: మన శ్రీ చైతన్య విద్యార్థి
0: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9
4: వెల్కమ్ బ్యాక్ లిజనర్స్. सो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड आस्थमा डे के बारे में. सो एवरी ईयर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर आस्थमा सेट स्पेसिफिक गोल्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन आस्थमा. एंड द गोल फॉर दिस ईयर इज एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर ऑल. सो इन आवर कंट्री वी ऑफन सी पेशेंट्स रिलाइंग ऑन रेस्क्यू और ब्लू इनहेलर्स व्हेन दे फील ब्रेथलेस.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूक कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरों मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है।

0: प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ. अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India has said the attack on the Fujairah Petroleum Industries zone in the UAE, which resulted in injuries to 3 Indian nationals, is unacceptable. 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries zone yesterday, following a drone attack from Iran. In a statement, the External Affairs Ministry called for the immediate cessation of hostilities and condemned the targeting of civilian infrastructure and innocent civilians. It said India continues to advocate for dialogue and diplomacy to address the situation so that peace and stability may be restored across West Asia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Dr. Jaishankar was addressing the media after his meeting with Jamaican Foreign Minister Kamina Johnson-Smith and other cabinet members. The External Affairs Minister said the talks were comprehensive and substantive, covering the full spectrum of bilateral ties and identifying new avenues to further strengthen cooperation. He noted that both countries signed several important agreements and discussed the effective implementation of recently concluded MOUs in areas such as digital transformation, cultural exchange, sports and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
3: We reviewed the entire gamut of India-Jamaica relations. We identified new avenues for further strengthening our partnership. We have signed several important agreements and we discussed effective implementations of MOUs which have been recently concluded in the fields of digital transformation, cultural exchange, sports and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
2: The government has said there has been no dry out at LPG distributorships across the country and has assured that measures are being taken to ensure uninterrupted availability of petroleum products.

0: जो है वो मायके गई हुई है, बच्चे ननिहाल, तो ना ज्ञानचंद जी भी बहुत खुश थे। तो मैंने पूछा क्या बात है ज्ञानचंद जी, तो बोले कि भाई क्या बात है, ऐसे मत पूछ, बहुत मजे की बात है कि श्रीमती ज्ञानचंद जी मायके गई हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप उनको मिस कर रहे होंगे। तो अब वो बात का जवाब उन्होंने क्या दिया होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन एक बात है कि श्रीमती ज्ञानचंद जी ना जब भी मायके जाती है ना, तो हर दिन जो है ज्ञानचंद जी को फोन करती है। तो उन्होंने मुझे पूछा, ज्ञानचंद जी ने, कि प्रीति ये जो जब पत्नियां मायके जाती है ना, तो रोज जो है फोन करके क्यों पूछती हैं अपने पतियों से, क्यों बात करती हैं? तो मैंने कहा भाई ज्ञानचंद जी, ये तो प्यार की बात है कि जब भी पत्नी जाती है तो वो अपना कंसर्न अपने पति के प्रति बताना चाहती है, इसके लिए जो है रोज फोन करती है। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि ये गलत बात है। अब आप ही बोलिए क्या ये गलत है? नहीं है ना। लेकिन ज्ञानचंद जी का वर्जन क्या है बताऊं आपको? ज्ञानचंद जी कहते हैं कि जब भी पत्नियां मायके जाती हैं तो वो रोज पतियों को इसलिए फोन करती हैं ताकि पतियों को याद रहे कि मुसीबत टली नहीं है, फिर से आने वाली है। भाई आप अपने घर में ये नुस्खा कभी मत आजमाना, ज्ञानचंद जी के कहने पर आजमाओ तो अपने रिस्क पे आजमाना, क्योंकि फिर आप मुझे आके ये मत कहना कि ज्ञानचंद जी ने कहा था, प्रीति तूने कहा था, मैंने नहीं कहा, ये सब ज्ञानचंद जी के हथकंडे हैं ना। चलिए ये तो बहुत सारी बातें हो गई, पर कुछ अहम बातें भी आप तक हमें पहुंचानी है, और अहम बातों को आपसे हम साझा करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ विशेष जानकारियां होती है जो हमें आप तक पहुंचानी होती है। जी हाँ, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर फॉर अ स्मॉल कमर्शियल स्पॉट एंड देन वील बी कैचिंग यू।
1: FM Rainbow 101.9। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9।
0: और साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि भले ही ज्ञानचंद जी और श्रीमती ज्ञानचंद जी के बीच में कितनी ही नानुकुर, कितने ही जो है छोटी छोटी बहस ना हो जाए, पर आखिर में कहेंगे दोनों यही, क्या

0: रेनबो 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना शो नमस्ते हेलो आदाब आपके धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति के साथ। और हम इतने समय से आपके साथ बने हुए हैं, आप सोच रहे होंगे कि आपके मैसेजेस हम कब शामिल करेंगे। भाई आपके मैसेजेस भी शामिल कर रहे हैं, मायूस मत होइएगा। वैसे साथियों यदि आप भी, जी हाँ आप ही से कह रहे हैं, यदि आप भी कोई मैसेज सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348211। और मैसेजेस और बढ़ूं तो मैसेज भेजा है, आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर जुगल किशोर जी जाजू और श्रीमती उमा जी जाजू, क्या बात है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आपको। और हम आपको यही जो है शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जिंदगी के सफर में बना रहे आपका साथ, जिंदगी के सफर में बना रहे आपका साथ, आपके खूबसूरत रिश्ते पर ना आए कभी कोई आंच, हर पल हर लम्हा महकता रहे आपका रिश्ता आपका प्यार, जिंदगी में हर पल आए खुशियों की बहार। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डॉक्टर जुगल किशोर जी जाजू एंड डॉक्टर उमा जी जाजू को। तो चलिए उमा जी और जुगल किशोर जी एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, शायद वो भी आपस में एक दूसरे को यही कह रहे हैं ना कि फलक तक चल साथ मेरे ऑब्वियसली। तो चलिए उसी प्यारे से गीत की ओर बढ़ते हैं। साथियों ऐसे में आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222। स्टे ट्यून्ड।

0: FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ और ढेर सारे मैसेजेस जिसमें आपको बताया आकर हैं। सैयद मुनीरुद्दीन ने मैसेज भेजा है, कुछ खास नहीं लिखा है और साथ ही मैसेज भेजा है, इन्होंने अपना नाम कहाँ लिखा है चलिए ढूंढते हैं पर मैसेज पहले पढ़ लेते हैं। आपकी दोस्ती को एहसान मांगते हैं, निभाना अपना ईमान मानते हैं, लेकिन हम वो नहीं जो दोस्ती में अपनी जान दे देंगे, क्योंकि दोस्तों को तो हम अपनी जान मानते हैं। वाह वाह वाह क्या बात है। और साथ ही लिखा है कि नमस्कार प्रीति जी, आप आ गए, आप सुपर सुपर शो, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। ओके थैंक यू। और साथ ही मैसेज भेजा है, इन्होंने भी अपना नाम मेंशन नहीं किया है। ओके इनका नाम है हैदराबादी, ओके हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल शाह जी, क्या बात है। इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की वो हमने ऑलरेडी प्ले कर दिया है और मैसेज किया है कि ऐसी बेवफाई की उसने मोहब्बत भी बदनाम हो गई। अपनी मोहब्बत की कितनी कीमत अपनी मोहब्बत की इतनी कीमत वसूल की उसने कि हमारी अर्थी भी नीलाम हो गई। भाई दिल को छू लेने वाली बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात। और मैसेज भेजा है रेडियो शौकीन सरवर जी ने, वो एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी आपके गीत को हम आप तक पहुंचाएंगे और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं दोस्तों, पर कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचानी है तो पहले हम उसी और बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: FM Rainbow 101.9

0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM Rainbow 101.9।
3: और साथियों, आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं सुहाने गीतों का सफर। आपके धड़कनों पर जुड़ी आरजे प्रीति के साथ आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां पर हम अभी फिलहाल आपके मैसेज शामिल कर रहे हैं। तो मैसेज भेजा है बाचूपल्ली से प्रशांत जी डागा और अर्पिता जी डागा ने। कह रहे हैं कि कल उनकी प्यारी गुड़िया रानी, उनकी प्यारी लाडो रानी का बर्थडे है, इसलिए वो उन्हें आज एडवांस में विशेष देना चाहते हैं। कहते हैं कि आसमान का चांद तेरी बाहों में हो, आसमान का चांद तेरी बाहों में हो, तू जो चाहे वो तेरी राहों में हो, हर वो सपना हो पूरा जो तेरी आंखों में हो, और खुशकिस्मती की हर लकीर तेरे हाथों में हो। भाई वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारे विशेष आपने भेजे हैं। और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे अनीशा। ओके, चलिए अनीशा जी को हम सभी की ओर से भी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस। और एक प्यारा सा गीत आपने प्यारी बेटियों के लिए डेडिकेट किया है और स्पेशली अपनी प्यारी गुड़िया रानी अनीशा के लिए जो डेडिकेट किया है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: रेनबो 101.9 साथियों आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर अब बारी एक अहम जानकारी की।
1: ಲಲ್ಲೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪನಿ ಸ್ವೇಚ್ಛ ಲೋಪಾಲು ಸರಿದಿದ್ದೇ ವ್ಯವಸ್ಥ 40 ಏಳ್ಳ ಅನುಭವಂ ಚೆಪ್ಪೆ ಪಾಠಂ ಗುರಿ ತಪ್ಪನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮುಲ ಬಲಂ ಮನ್ನಿ ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಲೋನೆ
0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9 और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं सुहाने गीतों का सफर आपके धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति के साथ आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां पर बहुत सारी बातें आपके साथ मुझे साझा करनी हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आकर हैं। और मैसेजेस की ओर बढ़ने से पहले एक विशेष बात आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। साथियों गर्मियों की छुट्टियों में आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बद्रीनाथ जो है ना वो एक आदर्श गंतव्य यानी कि एक आइडियल डेस्टिनेशन हो सकता है। चार धाम में आने वाले मंदिरों में से एक यह मंदिर जो है वो वर्ष भर में केवल 6 महीने ही खुला रहता है और बाकी 6 महीने इसके कपाट बंद रहते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर लगभग 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर बना ये मंदिर सदियों से प्रकृति की सब

कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए आज भी साथियों मजबूती से खड़ा है। सोचिए, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, सर्दियों में कई कई फीट तक गिरने वाली बर्फ, और ऊपर से ये इलाका जो है वो एक एक्टिव भूकंप जोन में आता है, और फिर भी ये मंदिर आज तक सुरक्षित है। कैसे, ये जानने के लिए जुड़े रहिएगा। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं आप ही में से आप ही की फरमाइशों की ओर, जिसे भेजा है डॉक्टर खान एंड फैमिली निज़ामबाद से। कहते हैं कि इट वॉज लॉन्ग वेटिंग फॉर हिंदी शो, वेलकम जी। और एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तुमको हमारी उम्र लग जाए, बहुत प्यारा सा गीत। कहते हैं कि दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू, स्पेशल विशेज फ्रॉम ऑलमाइटी फॉर योर हेल्थ एंड हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ वेयर एवर यू आर, प्रेयर्स फॉर वेलबींग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खान साहब, आपने अपने दिल में इतनी जगह दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए, स्टे ट्यून्ड। वैसे साथियों, यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप

हम आगे बढ़ते हैं आप ही में से आप ही की फरमाइशों की ओर, जिसे भेजा है डॉक्टर खान एंड फैमिली निज़ामबाद से। कहते हैं कि इट वॉज लॉन्ग वेटिंग फॉर हिंदी शो, वेलकम जी। और एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तुमको हमारी उम्र लग जाए, बहुत प्यारा सा गीत। कहते हैं कि दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू, स्पेशल विशेज फ्रॉम ऑलमाइटी फॉर योर हेल्थ एंड वेल्दी हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ वेयर एवर यू आर, प्रेयर्स फॉर वेलबींग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खान साहब, आपने अपने दिल में इतनी जगह दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए, स्टे ट्यून्ड। वैसे साथियों, यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

इस बद्रीनाथ मंदिर के डिजाइन को हमें सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि साथियों बद्रीनाथ मंदिर जो है वो उत्तर भारतीय नागर शैली में बना है, जिसमें ऊपर ऊंचा शिखर होता है। चूंकि यहाँ सर्दियों में बहुत भारी बर्फ गिरती है, तो यदि मंदिर की छत सपाट होती तो जमा हुई बर्फ का वजन धीरे धीरे धीरे जो है पूरे ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता था, है ना। इसीलिए मंदिर को ऊंचे शिखर और ढलान वाले स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया, ताकि बर्फ छत पर जमा होने के बजाय नीचे फिसल जाए। मंदिर के जो ऊपरी हिस्से में धातु की परत भी लगाई गई है, जैसे कि तांबा वगैरह है, तो ये मात्र सजावट नहीं है साथियों, बल्कि पत्थरों को बारिश और बर्फ से काफी हद तक सुरक्षित रखने के लिए भी सहायता करती है। और भी जानकारी साझा करूंगी, पर फिलहाल आप ही में से आप ही की फरमाइश की और बढ़ते हैं। और मैसेज भेजा है इन्होंने अपना नाम, यस, रेडियो शौकीन सरवर जी, ये लीजिए आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए। स्टे ट्यून्ड, फिल्म लीडर से एक प्यारा सा गीत।

0: 101.9
1: సిరి పెయింటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హిమాయత్ నగర్ జూబ్లీ హిల్స్. ఈ వేసవి సెలవుల్లో పెయింటింగ్ లో ఆసక్తి ఉన్న వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వబడును. ఫోన్ నంబర్ 9849419642.
0: FM Rainbow 101.9.
2: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, जहां पर फिलहाल हम जो है गर्मी की छुट्टियों में एक आइडियल डेस्टिनेशन बद्रीनाथ के बारे में आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान और तकनीक दोनों भी हैं, और खैर आस्था और विश्वास तो है ही। प्रकृति के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित

0: 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं सुहानी गीतों का सफर आपके धड़कनों पर जीती आरजी प्रीति के साथ आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। और स्टूडियोज की घड़ी में 12:49:25 हो रहे हैं और बहुत जल्द हम आपके फेवरेट शो यानी कि हेलो रेनबो की ओर बढ़ेंगे। पर उससे पहले हम बद्रीनाथ के बारे में जो बात कर रहे हैं तो उसकी बात आपको बताऊं कि डिजाइन के बारे में तो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की। अब मंदिर की नींव की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर ना बड़े बड़े पत्थरों से गहरी और मजबूत फाउंडेशन बनाई गई है ताकि जमीन में हल्का मूवमेंट होने पर भी मंदिर सुरक्षित रहे। और क्योंकि ये इलाका भूकंप से जो है भूकंप यहाँ पर बहुत आते हैं और पहाड़ी क्षेत्र से है तो यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के मिश्रण वाली पारंपरिक तकनीक भी उपयोग में की गई है जो कि झटकों की जो भूकंप के झटके होते हैं उसकी ऊर्जा को सहन करने में सहायता करती है। इस मंदिर के पास ना एक प्रसिद्ध तप्त कुंड भी है जहाँ का पानी प्राकृतिक रूप से गर्म रहता है और ये गर्मी जमीन के अंदर मौजूद जियोथर्मल ऊर्जा के कारण होती है। सदियों पुराना ये मंदिर आज भी साथियों हमें ये बताता है कि प्राचीन भारत की वास्तुकला कितनी अद्भुत और वैज्ञानिक थी। और दोस्तों ऐसे अद्भुत संगम को देखना तो बनता है ना। तो चलिए यहाँ पर आप अपना प्लान बनाइए, तब तक फिलहाल हम आप ही में से आप ही की फरमाइशों की ओर बढ़ते हैं। और मैसेज भेजा है फलकनुमा पैलेस से उमर खान ने, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं काइट मूवी, तो चलिए उसी ओर बढ़ते हैं, स्टे ट्यून्ड। परंतु किसी भी प्यारे से गीत की ओर बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी आप तक पहुँचाते हैं।
2: బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్, కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. ఎల్ఐసి హర్పల్ ఆప్కే సాథ్.

तो साथियों, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा गीत। अरे भाई, जब आप अलर्ट है या नहीं है ये भी तो देखना पड़ता है ना, कि हमारी श्रेया ने आपको एक गीत बताया और आप सोच रहे होंगे कि दूसरा गीत चला गया। नहीं, ये तो हम, आप अलर्ट है या नहीं है ये देखने के लिए ये गाना उन्होंने प्ले किया। खैर, एनीवेज, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड। और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम, आने वाला है हेलो रेनबो, बिल्कुल इसके बाद में।

0: Rainbow 101.9.
1: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్.
2: और साथियों, आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आप ही में से आप ही की फरमाइश आप सभी के लिए आपके अपने प्रोग्राम में, जहां मैं आपके धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति लेकर आई हूं पी का पी यानी कि प्रीति का पिटारा, और जिसमें समय हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेलो रेनबो का। तो हेलो रेनबो में आगे बढ़ने से पहले बात ज्ञानचंद जी की। एक दिन ना ज्ञानचंद जी को नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने रात में जो है श्रीमती ज्ञानचंद जी से कहा कि श्रीमती जी क्या कर रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही है। इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने तुरंत कहा कि अच्छा, नींद नहीं आ रही है तो एक काम करो, रसोई में बर्तन पड़े हैं, जाके वही धो लो। अब इतना सुनना था कि पता है श्रीमती जी की बात सुनकर ज्ञानचंद जी ने क्या कहा? ज्ञानचंद जी ने कहा कि अरे पगली, मैं तो नींद में बात कर रहा हूँ। पर साथियों, अब आपको नींद में बात करने की आवश्यकता नहीं।

हैं क्योंकि आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जी हाँ, आपके अपने प्रोग्राम हेलो रेनबो में। तो यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं हमारे नंबर्स बता दूं कि 0402323 0030 2323 4821 या फिर 0402970 4715 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारी फोन लाइंस बिजी आ रही हैं तो भाई साथियों, नाराज नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, बस हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर देने का। व्हाट्सएप हमारा ना व्हाट्सएप नंबर है +91040-2323-4822। और आगे बढ़ने से पहले आप ही में से आप ही की फरमाइश मैसेज भेजा है। अजहरुद्दीन साहब ने एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, वो उनका जलवा दिखाना चाह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है उनका जलवा। और जलवे की गीत की और आगे बढ़ने से पहले आपके साथ यस ऑफ कोर्स मैं टॉपिक साझा करना चाहूँगी। टॉपिक है कि साथियों, जीवन में रिश्ते होना ज़्यादा आवश्यक है या फिर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़्यादा आवश्यक है। गौर कीजिएगा, जीवन में रिश्ते होना ज़्यादा आवश्यक है या फिर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़्यादा आवश्यक है। जिंदगी में रिश्ते या रिश्तों में जिंदगी, क्या कहना है आपका बताइएगा। हमें कॉल करने के लिए नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, और एक कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं पर शायद उनका कॉल लग नहीं पा रहा है। चलिए हम प्यारे से गीत की ओर बढ़ जाते हैं और पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टॉपिक है, हम तो चाहते हैं कि रिश्ते के साथ चलना हमारा काम है।
1: बिल्कुल,
0: रिश्ते कोई भी हो, या फ्रेंडशिप हो दे या घर का हो दे, किधर भी रहा तो भी किन से भी बात करे तो अपन मोहब्बत से बात करे तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाता है, हम अपना काम कर ले सकते हैं। तो मैं एक बात क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक जनवरी 28 को लाफिंग क्लास और लाफिंग क्लब शुरू कर रहा हूँ।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
0: तो वो चलते चलते चलते हुए आज उसका स्कोर क्या, आज का स्कोर बोलता हूँ, आज का 38 स्कोर है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर।
0: तो हमारे पार्क में डेली मौका 10 मिनट का काम है बस, इतना ही।
1: बहुत अच्छी बात है, मतलब आप जो है रिश्तों में जिंदगी फूंकने के लिए ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। साथियों, हम आपसे जुड़ने से पहले यही नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। और यहाँ पर मैसेजेस की ओर बढ़ती हूँ। मुनीर अली ने मैसेज किया है, एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं, ये गीत चलिए हम आपको सुनवा देते हैं, स्टे ट्यून। यदि आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323482123234822 या फिर 2970471 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों,

0: रेनबो 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते होना जरूरी है, रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है। तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी नम्र निवेदन के साथ आगे बढ़ती हूं कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
2: हेलो प्रीति जी।
1: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रही है?
2: नमस्कार, मुमताज बात कर रही हूँ
1: हस्मतपेट से। मुमताज जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका। मुमताज जी कैसी हैं आप?
2: आपका भी नमस्कार, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। शेर खान भाई को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम, हर किसी को ना दुआ में याद रखो बोलो। और रिश्तों की जो बात

0: जो कर रहे रिश्तेदारी में जरूरी है, जिंदगी में रिश्तेदारी जरूरी है, रिश्तेदारी में रिश्ते रहे तो ही आगे रिश्तेदारी बढ़ती,
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: रिश्तेदारी में जिंदगी
0: बहुत
1: हो तो ही रिश्तेदारी आगे बढ़ती है। बहुत सही
0: आगे
1: बात बताई
0: बढ़ती।
1: आपने मुमताज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, इसी विषय पर बात करने के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो, हेलो। लगता है कि इन्हें हमारी आवाज़ पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ नहीं पसंद आई तो नहीं आई, हमारे जो गायक हैं उनकी आवाज़ तो अवश्य पसंद आ जाएगी। चलिए हम अपने अगले अगले कॉलर की ओर बढ़ना चाहते हैं, पर उससे पहले कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचा देना चाहते हैं। मैसेज भेजा है अत्तापुर से राजू, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं। और भी कुछ मैसेजेस हैं जिनकी ओर हम बढ़ेंगे, पर एक कॉलर की ओर बढ़ जाते हैं। हेलो रेनबो, हेलो।
0: आज सीमा आज के तो मेरा सुबह सुग्राम
1: हेलो, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: पल्ली से सोनू बात कर रहा हूँ।
1: शिवराम पल्ली से सोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू जी, आपको हम सख्त हिदायत यही देते हैं कि कृपया आप मात्र विषय तक ही बात करें और इस मंच की गरिमा को मेंटेन करें।
0: सदा ठीक है, बोलता हूँ सुनो। हेलो,
1: बताइए।
0: आपका कपि है ना, रिश्ता और जीवन, परिवार से शुरू होता रिश्ता और रिश्ता से शुरू होता जीवन। रिश्ता परिवार नहीं, जीवन उसका क्या है, तेरा जैसा मेरा जैसे और तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए रिश्ता, वो रिश्ता तो नहीं है, बोलते रहेंगे तो रिश्ता रहोगे।
1: सोनू जी, आपकी आवाज़ हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपके फ़ोन लाइन में कोई डिस्टरबेंस है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि कृपया आप जो है सिग्नल में आकर बात कीजिएगा, ताकि आपकी बात हमें और बाकी सभी को भी सुनाई पड़े। साथियों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, जो कि अत्तापुर से राजू की फरमाइश है, उस ओर बढ़ेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन बात आती है हमारे विशेष जानकारियों की, तो पहले उस विशेष जानकारी की ओर बढ़ते हैं।
2: FM Rainbow 101.9 मार्पु मंच।

0: 101.9 और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते होना ज्यादा जरूरी है, रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है। तो इस पर मधुलिका जी हमारे साथ जुड़ रही है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: बहुत दिनों के बाद आए।
0: बस जब बुलाए तब आ गए।
1: वही जयश्री जी को पूछी थी मैं।
0: ओके जी बताइएगा।
1: रिश्ते तो जरूरी है मैडम,
0: रिश्ते जरूरी
1: है। निभना जरूरी है, वो
0: निभना जरूरी है
1: और दोनों तरफ से निभना, वो
0: निभना जरूरी है, क्योंकि रिश्ते तभी निभेंगे जब उसमें
1: अपन तो निभाए, सामने वाले निभाना वो जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपने साझा की मधुलिका जी, बहुत अच्छा
1: मैडम।
0: लगा
1: आपके भाई चले गए ना।
0: जी हाँ, पता चला हमें नीरज जी के बारे में, और हम ईश्वर से यही जो है प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं सदगति प्रदान करें। और देखिए जो खाली जगह हुई है वो कोई भी नहीं भर सकता है, बस हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि कृपया जो है आपको हिम्मत दें जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए। बहुत दुख हुआ सुनकर मधुलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी हाँ साथियों, मधुलिका जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके श्रीमान जी नीरज जी पांडे जो हमारे रेगुलर कॉलर हुआ करते थे, कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया है, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करें।

0: साथियों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और यहाँ पर हमारा काम है सुनना, है ना भाई? हमारा काम सुनना है, इसलिए आपकी फरमाइशें प्ले कर रहे हैं और आपके साथ बात भी कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पर आज हमने आपसे पूछा कि जीवन में रिश्ते होना चाहिए या रिश्तों में जीवन, तो इस पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
1: हेलो रेनबो, प्रीति जी नमस्ते। हाँ
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं
1: वो ठीक हो ठीक हो। आप आने से और भी अच्छी हूँ।
0: आप? आह
1: आप
0: बहुत
1: आए
0: बहुत
1: करके मैं
0: धन्यवाद।
1: बात कर रही। नहीं, आप इतने दिनों बाद आए ना।
0: जी
1: यस, आपको आना चाहिए रेडियो पे, मालूम नहीं तो रेडियो बहुत सुना हो जाता। सही बोल रहे
0: आपने जो है इतनी जगह दी अपने दिल में, उसके
1: नहीं
0: लिए बहुत
1: जगह
0: बहुत
1: नहीं, वो जगह
0: धन्यवाद।
1: आपने बना लिए भाई। अभी आप रिश्तों की बात कर रहे हैं ना, ना
0: जी
1: मैं आपको देखी ना मैं आप मेरे को देखे, लेकिन एक आवाज से हम लोग आपकी बिहेवियर से बोल तो आप जो बातचीत का लहजा है और आप जो हर किसी को एक हमदर्दी से, ये एक रिश्ता है ना, बोलिए
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: ऐसे
0: कहा
1: रिश्ते।
0: कि एक अनजाना रिश्ता
1: हाँ,
0: है आपके और
1: एक
0: हमारे
1: टाइम आप
0: बीच।
1: आए करके मैं कॉल करी, मालूम वरना तो आजकल थोड़ा कम कर दी मैं, क्या करूँ
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: या रिश्ते। हाँ प्रीति जी,
0: जी
1: हाँ रिश्ते, देखिए रिश्तों में जिंदगी है, मालूम जिंदगी तो हम जीते हैं, लेकिन जब वो रिश्तों में अपनापन रहता है

0: तभी जिंदगी भी रहती है।
1: बहुत सही बात, बहुत अच्छी
0: इसीलिए
1: बात आपने
0: जिंदगी के
1: बताई।
0: लिए बहुत जरूरी। और आज के इस बिजी शेड्यूल में ना पैसा एक पात्र निभा रहा है, जो रिश्ते कम से कम टूट जा रहे हैं ना, वैसे
1: जी
0: नहीं होना चाहिए। दिल से निभाइए आप, दिल से जहाँ तक आप उन रिश्तों को बचा सकते हो, और एक पहचान, और मिलने से या ना भी मिलो एक फोन कर लिया करो, भाई बात करो, तो ये
1: किसी न
0: कितनी
1: किसी
0: अच्छी
1: रूप में
0: बात
1: जुड़े
0: है। वो
1: रहना
0: रिश्ते,
1: ज्यादा आवश्यक
0: हाँ,
1: है।
0: जुड़े रहना चाहिए, तभी आपका रिश्ता भी बचा हुआ रहता है, और वो एक जो दिल से लगाव, मन से जो लगाव रहता है ना, वो कभी नहीं टूटता। उसको कोई रिश्ते का नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए आपका बस उसमें, तो
1: बहुत
0: अपने
1: सही
0: आप
1: कहा,
0: रिश्ते
1: बहुत
0: बन
1: अच्छी
0: जाते हैं।
1: बात।
0: थैंक यू प्रीति जी, मेरे को टाइम दिया
1: मोस्ट
0: आपने।
1: वेलकम, मोस्ट
0: थैंक यू
1: वेलकम,
0: थैंक
1: बहुत
0: यू
1: बहुत
0: थैंक यू
1: धन्यवाद
0: सो
1: आपका
0: मच।
1: जुड़ने के लिए। तो साथियों, रिश्तों में जिंदगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर यही हमारे जो है काफ़ी सारे कॉलर्स का कहना है। कुछ और कॉलर्स की ओर बढ़ते हैं, पर मैसेज की ओर भी बढ़ना चाहते हैं। मैसेज भेजा है शिवानी उमेश यापराल।

0: हाँ जुड़े रहना चाहिए, तभी आपका रिश्ता भी बचा हुआ रहता है और वो एक जो दिल से लगाव, मन से जो लगाव रहता है ना, वो कभी नहीं टूटता। उसको कोई रिश्ते का नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए आपका बस, उसमें तो
1: बहुत
0: अपने
1: सही
0: आप
1: कहा,
0: रिश्ते
1: बहुत
0: बन
1: अच्छी
0: जाते
1: बात,
0: हैं। थैंक यू प्रीति जी, मेरे को टाइम दिया
1: मोस्ट वेलकम,
0: आपने।
1: मोस्ट
0: थैंक यू
1: वेलकम,
0: थैंक
1: बहुत
0: यू
1: बहुत
0: थैंक यू
1: धन्यवाद
0: सो
1: आपका
0: मच।
1: जुड़ने के लिए। तो साथियों, रिश्तों में जिंदगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर यही हमारे जो है काफ़ी सारे कॉलर्स का कहना है। कुछ और कॉलर्स की ओर बढ़ते हैं, पर मैसेज की ओर भी बढ़ना चाहते हैं। मैसेज भेजा है शिवानी उमेश यापराल सैनिकपुरी से, कहती हैं एक प्यारा सा गीत की फरमाइश वो कर रही हैं, और ये कहती हैं कि आई डेडिकेट दिस सॉन्ग फॉर माई सेल्फ, आजकल सेल्फ लव इज़ बेटर ऑप्शन, ऐसे लग रहा है। बहुत खूब, बहुत बहुत सही कह रही हैं आप, क्योंकि जब भी आप जो है अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं, तब लोग आपके साथ खेलते ही हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। और हरिहरन, नहीं नहीं ये इन्होंने मैसेज भेजा है गौतम जी ने हिमायत नगर से, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, वो भी आप तक अवश्य पहुंचाएंगे, पर फिलहाल साथियों समय हो चला है कि कुछ विशेष जानकारियां आप तक पहुंचा दें, तो पहले उसी ओर बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।
2: FM Rainbow 101.9
3: कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीनो हमें सही राह दिखाती।
4: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
5: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते रहना ज्यादा मुख्य है या फिर रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा, तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। और कॉलर्स की ओर बढ़ने से पहले यही नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी बात आप संक्षेप में साझा करें, ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
6: राधे राधे
1: राधे
6: राधे, सुखचैन से रहना है तो राधे राधे कहना है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, हमें तो सुखचैन से रहना है, इसीलिए हम राधे राधे ही कहेंगे। बताइए मुरली जी, कैसे हैं आप?
6: कहिए कहिए प्रीति जी, एकदम एक्सेलेंट। आप कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आए, बहुत समय के बाद आए आप।
1: बस जब बुलाया तब आ गए मुरली जी।
6: वो भी तो अच्छा करे प्रीति जी, एकदम सही करे आप। और एक आपके बात, आपका आवाज एकदम सुरीला रहता, आपका आवाज किसको पसंद नहीं आते बोले आप? आप वैसा बात नहीं कही है आप।
1: ठीक है, नहीं किसी ने कॉल कट कर दिया तो इसलिए मैंने, अब जरूरी नहीं है ना कि आपको समझ में आए, आए आपको अच्छी लगे तो सभी को अच्छी लगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना।
6: नहीं, आपका आवाज तो बहुत ही अच्छा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो कहते हैं ना कि अच्छाई देखने वालों की नजर में होती है, वैसे अच्छाई आप में है, इसलिए हमारी आवाज आपको अच्छी लग रही है।
6: సయ్య ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా అందమైన ఇంకొక కంఠస్వరం వినబడ్డది, వాళ్ళ కంఠం కూడా చాలా బాగుంది, వాళ్ళ శుభనామం తెలిస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక నమస్కారం చెప్తాను. రాధే రాధే.
1: చెప్పండి చెప్పండి.
7: నమస్కారం అండి. రాధే రాధే, నా పేరు శ్రియా. శ్రియా అండి.
6: శ్రియా గారు బాగుందా?
1: హలో
6: హలో, శ్రియా గారు బాగున్నారా?
7: బాగున్నానండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు?
6: ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నానండి. బాగుండండి, చాలా బాగుండండి మీరు. అయితే ప్రీతి గారు, ప్రీతి
1: జీ బాయి,
6: आप जो टॉपिक लिए, मैं तो यही सोचता हूँ कि अपने भौतिक देह है ना, उसके अंदर अपना आत्मा से और वो देह को, वो रिलेशन अगर अपन सही लगा लिए, पूरा पूरा पृथ्वी का रिलेशन अपने साथ सही रहेगा।
1: बहुत सही, बस मतलब आज के टॉपिक को आपने एक आध्यात्मिक रुख दे दिया है मुरली जी, बहुत अच्छा लगा।
6: और एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको, एकदम दिल से थैंक्स कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। किस बारे में पूछिए आप
1: जी, बताइए।
6: मैं दृष्टि में हूँ, मेरे को बद्रीनाथ का दर्शन कराया है, उसके वास्ते आपको थैंक यू।
1: मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा
6: लगा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू मुरली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुरली जी डिफरेंटली एबल्ड हैं और हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और उन्होंने आज के विषय पर बात की, और एक और कॉलर की ओर हम बढ़ना चाहेंगे इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें। हेलो रेनबो। नमस्कार। हेलो
8: हेलो, आदाब सर
1: जी। नमस्कार, बताइए कौन बात कर रहे हैं?
8: मैं जीनत।

0: नमस्कार जीनत जी, कैसी हैं आप?
1: आपका
0: ऊपर वाले का उपकार है, आपकी शुभकामनाएं हैं, बताइए।
1: मैं गाना गा रही हूँ, सुनिए आप।
0: सुनाए।
1: ये दुनिया के बदल से रिश्ते ना जाने कैसे एक पल में बदल
0: बदल
1: जाते
0: जाते
1: हैं।
0: हैं,
1: ये
0: बहुत खूब, बहुत सही।
1: दुनिया के बदलते रिश्ते
0: बहुत अच्छी बात, बहुत जो है इन शॉर्ट आपने जो बताया है ना, बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर हम मैसेजेस की और भी साइमल्टेनियसली बढ़ना चाहते हैं। मैसेज भेजा है अश्विन जी ने कोठी कुशाल मार्केट से, कह रहे हैं कि सभी को जय श्री कृष्णा, और कहते हैं आप आए बाहर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही कहते हैं कि गूगल पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, पर मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार ही दिखा सकता है। बहुत सही कहा आपने। और क्या कहते हैं, उदय किसी का अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे उदय होता है। धैर्य और तपस्या जिस इंसान में है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है, ऐसे आपका कहना है। बहुत सही कहा। और अंत में कहते हैं कि जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत प्यारा मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज। और क्या कह रहे हैं, जिंदगी का हर फैसला हमारा नहीं होता, कुछ फैसले वक्त और हालात पर भी छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी जाली मिल जाते हैं। भाई अब ये तो इंसानों पर निर्भर करता है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं एक विशेष जानकारी के लिए, स्टे ट्यून्ड।
2: FM Rainbow 101.9 FM Rainbow 101.9
3: మీ సొంతింటి కల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ తో మీ సొంతింటి కల ఇప్పుడు మరింత సులభం. ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటు కేవలం 7.20%, సులభమైన ఈఎంఐలు ప్రతి లక్షకు కేవలం 679 రూపాయల నుంచే ప్రారంభం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రోజే మీ సమీపంలో ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ను సంప్రదించండి. మీ సొంతింటి కలకు బలమైన ఆర్థిక తోడ్పాటు.
2: FM Rainbow 101.9
0: और साथियों, आकाशवाणी के उसी FM Rainbow को ना 1.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते होना ज्यादा आवश्यक है, रिश्तों में जिंदगी। तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं की ओर बढ़ते हैं इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो। हरिओम हरिओम, विलास जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हम पूरी कोशिश करेंगे विलास जी, फिलहाल तो हम विषय पर बात करते हैं।
4: ठीक है, आज के विषय पर बात करेंगे
0: जी।
4: आज का जो विषय आपने कहा है कि रिश्ते यानी कि संबंध
0: जी हाँ,
4: या मित्रता या जुड़ाव, तो हम जिस समाज में रहते हैं तो इस समाज में हमारे संबंध अन्य व्यक्तियों से होना अनिवार्य है। हम अकेले या कुछ दो चार मित्रों की सहायता से हम जीवन जी नहीं सकते। तो जीवन जीना है, जीवन अच्छा जीना है, तो हमारे संबंध कई व्यक्तियों से होने चाहिए, हमारी मित्रता कई व्यक्तियों से होनी चाहिए, हमारा जुड़ाव भी कई व्यक्तियों से होना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए अगर से हमारा संबंध है, हमारी मित्रता है, तो क्या होगा कि उसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इसलिए कह रहा हूँ कि हम हमारे मित्र से जो घर में बात नहीं कर सकते, ऐसी बात हम हमारे मित्र से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: तो हमारा हृदय किसी के सामने अगर से पूर्ण रूप से खुला करना है तो वो एक मित्र ऐसा स्थान है जहाँ पर से हम कुछ बातें कह सकते हैं।
0: आपकी इसी बात पर एक बात कहती हूँ विलास जी, एक बात मुझे याद आ रही है कि यदि खोल लेते अपना दिल यारों के साथ, यदि खोल लेते अपना दिल यारों

0: के साथ तो कभी उसे खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको तो इसके लिए प्रमाण पत्र देना चाहिए कि तुरंत आप काव्य रचना भी कर देते हो।
0: धन्यवाद धन्यवाद। बहुत
1: अभी
0: अच्छा लगा।
1: आज की बात है, हम हमारे पोती को सुना रहे थे कि एक बार हमारा प्रवास यहाँ से पुणे हम कर रहे थे, तो आमने सामने लोग बैठे हुए थे, सबसे चर्चा हो रही थी। तो चर्चा करने से हुआ ये है कि उनके जो कोई संबंधी है जो भाग्यनगर में रहते हैं, वो और हम परिचित थे।
0: बहुत अच्छी बात। मतलब देखिए,
1: तो
0: वो पहचान भी वार्तालाप से।
1: इनके साथ भी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो तात्पर्य क्या है, जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपना मन किसी के सामने खुला नहीं करेंगे, तब तक के आप अपने आप में सुरते ही रहेंगे।
0: बिल्कुल तो सही कहा आपने।
1: हाँ, जितना आप खुलकर बात करेंगे, जितना आप खुलकर के संबंध प्रस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, उतना आनंद आपको मिलेगा।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने साझा की विलास जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चाहते तो यही है कि बहुत और ज्यादा आपसे बात करें, परंतु स्टूडियोज की घड़ी हमें यहाँ से ज्यादा आगे जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है, इसलिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं आप ही में से आपकी फरमाइश एक प्यारे से गीत की और। शिवानी उमेश जी की फरमाइश।

0: एफएम रेनबो 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है या जिंदगी में रिश्ते, इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसी नम्र निवेदन के साथ उनकी ओर बढ़ते हैं कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो,
2: गुड आफ्टरनून निशा जी। गुड आफ्टरनून,
1: हैप्पी आफ्टरनून। मैं आरजे प्रीति बात कर रही हूँ।
2: मैं राजकुमार निजामबाद से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
1: नमस्कार राजकुमार जी।
2: मैडम जी, ये रिलेशन बॉन्डिंग कैसा रहना बोले तो कभी मिलजुल के रहना है। अपना काम पड़े तो ये बात करना, काम नहीं पड़े तो उसको बंद रखना नहीं चाहिए वैसा।
1: बिल्कुल, और उसे रिश्ते भी नहीं कहते हैं, उसे मतलब ही कहते हैं।
2: मतलब ही नहीं है मैडम जी। और अपना घर कितना दूर है कि उनका घर भी उतना ही दूर समझ जाना।
1: बिल्कुल,
2: मतलब आना जाना
1: बराबर होना चाहिए।
2: वो बराबर करना चाहिए। काम पड़े तो ही बात नहीं करना।
1: बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात बताई आपने। बहुत सही बात बताई राजकुमार जी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी आप तक पहुँचा दिए देते हैं। स्टे ट्यून्ड।
3: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎన్యూమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
4: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
1: तो साथियों, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है, जिंदगी में रिश्ते, इस पर बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर शायद ये हमारे लास्ट कॉलर रहेंगे। देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो कॉलर की ओर बढ़ने से जी।
2: नमस्ते आरजे प्रीति जी।
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल बात कर रहा हूँ।
1: बस आपकी ये लाइन सुनने के लिए ही आपका नाम पूछना पड़ता है इकबाल जी। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना ये इंट्रोडक्शन दिया ऐसे, और इसी नम्र निवेदन के साथ आपसे मैं बात शुरू करती हूँ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो
2: जी हाँ, रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को हयात देना, रिश्ता निभाने के लिए आदमी हेल्पिंग नेचर होना और खुश अखलाक की बात करना, तो इंसान को जैसे रिश्ते कुछ बने बनाए मिल जाते हैं और कुछ रिश्ते बनाना पड़ता है। तो आदमी अपने किरदार से रहे नए रिश्ते जो बनाता है, और पुराने रिश्तों को भी अच्छे किरदार से और हेल्पिंग नेचर से लेके चले दोनों को, तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहलाता है।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने
2: जरूरी है।
1: बहुत सही बात आपने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। साथियों, वैसे और भी कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्टूडियोज की घड़ी हमें यहाँ से ज्यादा आगे जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। तो मैं जो भी हमारे साथ जुड़े उनकी बात हमारे से हो गई, बहुत अच्छी बात है, और जो जिनको हम ऑन एयर नहीं ले पाए उनसे हम क्षमा प्रार्थना करते हैं और अपने अगले शो में पुनः उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। और हमारे साथ अगली आरजे ज्योतिर्मयी बिल्कुल आप सभी को लुभाने के लिए तैयार हैं इस प्यारे से गीत के बाद, जस्ट द वे यू आर।

0: देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Yes, welcome back, listeners. 5:43 in the studio clock. Meeru vintunnaru Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow tho jeevitham rangulamayam. So yes, that's it for today. So ee roju topics kani paatlu kani mee andariki baaga nachayi ani cheppesi anukuntunnanu. And yes, that's it for today. So andaru kuda happy ga undandi, rainbow vintu undandi. And this is Ajay Jyotirmayi signing off officially. Stay tuned.

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: ರೈನ್ಬೋ 101.9.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है. अभी वक्त है प्रोग्राम नए रंग का. कुछ ही देर में आप समाप्त करेंगे प्रोग्राम नए रंग. फिलहाल स्टूडियोज की घड़ी में वक्त हुआ है 9:30 और 30 सेकेंड्स.

0: के आगाज पर आप सुनेंगे हरफे ताबिंदा, तहरीर और पेशकश है फहमिदा फहमोश की। समाप्त करें।
1: अकेले हम क्या है, बस एक बूंद है। अकेले हम क्या है, बस एक बूंद है। अगर मिल जाए तो फिर एक समंदर है। जी हाँ, इंसान एक समाजी हैवान है। अगर वो अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात तन्हा पूरी नहीं कर सकता, ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरों के तआवुन और इश्तराक की ज़रूरत होती है। इसी मिलजुल कर काम करने की सलाहियत को टीम वर्क कहा जाता है। जब कई अफराद एक ही मकसद को हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतों को एकजा कर देते हैं तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। टीम वर्क की अहमियत की अगर हम बात करें तो कभी भी किसी भी इदारे, तंजीम या खेल के मैदान में टीम वर्क की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। जब एक टीम काम करती है तो काम का बोझ तकसीम हो जाता है। हर फर्द अपनी महारत के मुताबिक जिम्मेदारी संभालता है जिससे काम जल्द मुकम्मल हो जाता है। नए ख्यालात सामने आते हैं और बेहतर हल निकलते हैं। सीखने का मौका मिलता है। टीम के अरकान एक दूसरे के तजुर्बात से सीखते हैं। टीम वर्क की अमली मिसालों की अगर बात करें तो खेल का मैदान, चूंटियों और शहद की मक्खियाँ और खुद हमारा इंसानी जिस्म है। खेल की दुनिया टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल है। अगर एक टीम में दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हो लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग खराब हो तो वो टीम मैच नहीं जीत सकती। जीत तभी मुमकिन होती है जब 11 खिलाड़ी अपने कप्तान की क़यादत में एक इकाई बनकर खेलते हैं। हमें टीम वर्क का बेहतरीन सबक छोटे छोटे जानवरों से मिलता है। शहद की मक्खियाँ मिलकर छत्ता बनाती है और हर मक्खी का अपना मखसूस काम होता है। इसी तरह चूंटियाँ अपने से कई गुना वजनी खुराक मिलकर उठाती है जो कि इतिहाद की अलामत है। हमारा जिस्म भी एक अजीम टीम की मानिंद है। दिल, दिमाग, हाथ और पांव सब अलग अलग काम करते हैं लेकिन इनका मकसद एक ही है, इंसान को जिंदा रखना। अगर एक अजू भी काम छोड़ दे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। टीम वर्क में पैदा होने वाले मसाइल या किसी गलत बात या फिर इख्तिलाफात का मुकाबला हमको दलील और हकायक के साथ करना चाहिए। टीम में अगर कोई ऐसी तजवीज़ दें जो आपको गलत लगे तो गुस्सा करने के बजाय हकायक पेश करें। जैसे कह दें कि आपका ख्याल अच्छा है लेकिन पिछली बार के नतायज के मुताबिक अगर हम इसे इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं के बजाय हम का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की बात को काटने के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप गलत कह रहे हैं कहने के बजाय हमें इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए। पहले सुने फिर जवाब दे। किसी का अगर मुकाबला करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले सामने वाले की पूरी बात सुने ताकि उसे लगे कि इसकी अहमियत है। जब वो बात मुकम्मल कर ले तो उसकी बात के मुस्बत पहलू की तारीफ करें, फिर अपनी राय पेश करें। मुख्तसर ये कि दुनिया की तमाम बड़ी कामयाबियाँ, चाहे वो चांद पर पहुँचना हो या कोई अजीम शान इमारत बनाना, सब टीम वर्क का ही नतीजा है। अगर हम भी तरक्की करना चाहते हैं तो हमें मैं के बजाय हम की सोच अपनानी होगी।
0: बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती अल्फाज आपने समाप्त किए प्रोग्राम हरफे ताबिंदा में। तहरीर और पेशकश थी फहमिदा फहमोश की। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि बेदारी कायनात सिलसिले के तहत हमारा मकसद ये होता है कि कायनात के जो निज़ाम हैं, जो तख्लीकात हैं अल्लाह ताला की दीगर, उनके ताल्लुक़ से हम कुछ मालूमात आप तक फराहम करें। इसी

जमीन से गायब होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि मौसम की इंतहाई किस्म की तब्दीलियां सामने आ रही हैं। कभी हद से ज्यादा सर्दी, कभी हद से ज्यादा गर्मी, और कभी अनलिमिटेड यानी गैर महदूद तौर पर इलाकाई फ्लड्स, बाढ़ का आ जाना, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान आज के बदलते हुए मौसम से एडजस्ट होना और उससे उसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल महसूस कर रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि ओजोन लेयर जब पतली हो गई है तो उसका गहरा असर हमारी जिल्द पर भी हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जिल्द के कैंसर

0: छोटी जगह की वजह से बार बार घरों में छोटे मोटे झगड़ों का सिलसिला चला रहता है, जिसकी वजह से आदमी हमेशा तनाव का शिकार और दबाव का शिकार रहता है। न सिर्फ ये, बल्कि वो गिज़ा जो मुलव्वस पानी से पकाई जाती है, इसके खाने से हमारे इस हिंदुस्तान में, जो एक तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि तरक्की पजीर मुल्क कहला रहा है, ज़्यादातर बीमारियाँ आंतों की हैं, मैदे की हैं, जिसमें से पेचिश, क्षय दस्त वगैरह हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे अत्फाल की अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है, छोटी छोटी सड़कों को शाहरा बनाने के लिए, जो उसके दोनों तरफ बड़े बड़े घने सायदार शजर होते हैं, उनको बड़ी बेदर्दी से काट रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वो सारे पौधे, वो सारे दरख्त जो हमारी खारिज शुदा कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन देती हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, सालिमों की तादाद जब हवा में बढ़ जाती है, तो इंसान तनफ्फुस के घुटन का शिकार हो जाता है। हमेशा उसके सर में दर्द, एक किस्म की चिड़चिड़ाहट और फैसला करने की कुव्वत कम होती जाती है, और उसके साथ साथ उसमें वो तमाम बीमारियां होती हैं जहां ऑक्सीजन पूरी तरह इंसान के खून के जसीमों में नहीं मिल सकती। न सिर्फ ये, बल्कि लोग ड्रग अब्यूज का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि स्लम एरियाज, छोटी छोटी बस्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। जहाँ पे स्लम एरियाओं का वजूद आ रहा है, वहाँ पे ड्रग अब्यूज़ भी, यानी नशावर चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीज़ों की वजह खुद इंसान है। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बस्तियों को काट कर वहाँ पे अपने अपने बड़े बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ा कर रहे हैं, और ये बेचारे शहरों को छोड़कर फिर छोटी छोटी बस्तियों के वजूद में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। छोटी छोटी बस्तियाँ या स्लम एरियाज का अपना एक अलग है। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग स्मोकिंग के आदी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर के बढ़ने और दिल की बीमारियों और ज़हनियत और मेमोरी यानी याददाश्त की कमी का शिकार होने की तमाम बीमारियां आबादी में बढ़ती जा रही हैं।
1: आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम नैरंग में बेदारी कायनात सिलसिले के तहत तकरीर, उन्वान था माहौलियाती इन्हेतात एनवायरमेंटल डिग्रेशन। तहरीर और पेशकश थी जनाब ताजुद्दीन डॉक्टर ताजुद्दीन खां की। सामाइन, वक्त भी आगे बढ़ा है और एक के बाद दीगर पेशकश भी आपके सामने पेश की जा रही है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी मालूमात में भी इजाफा हो और साथ में आपको पूरा पूरा हिस भी हासिल हो। इसी कोशिश के तहत हमने सजाया है हमारे इस शो का, हमारे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश को, यानी कि प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। दोस्तों, जब गीतों की बात होती है तो दिल बेकाबू हो ही जाता है, दिल में एक उमंग सी दौड़ने लगती है, क्योंकि मौसीकी, संगीत या म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी को एक नया रंग देता है, और गीत और गीत के बोल गोया हमारे दिल की दास्तां को बयां करने लगते हैं। इसीलिए तो हर शाम या हर रात हम आपके हिस के लिए आपके ख्यालात को एक बहुत ही खूबसूरत पैराए में ढालने के लिए सजा लाते हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। तो चलिए सुरीले गीत गाते गाते, सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का सबसे पहला गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ, एक बहुत ही ख़ास भी है, बहुत ही प्यारा सा भी है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी है, क्योंकि दोस्तों जब बात होती है साथ की और वक्त को रंगीन बनाने की या ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की, तो कोई ऐसा साथ ज़रूरी होता है जो हमारी ज़िंदगी को रंगीन बना दे या ज़िंदगी को सहारा दे दे। बहरहाल आइए आपको लिए चलते हैं गीतों के इस प्यारे से सफ़र पर। लीजिए सुनिए आज के शो का पहला गीत।

दोस्तों, किशोर कुमार जी की आवाज़ में आपने ये दर्द भरा मशहूर नगमा अभी सुना। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में एक साथ ही ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें अधूरा महसूस होने से बचाती है, अपने आप को अधूरा महसूस करने से बचाती हैं। बिना किसी के साथ की ज़िंदगी तन्हा गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी न किसी साथी की हमें ज़रूरत ज़रूर दरकार है, और वो कोई साथी जो कि आपका अज़ीज़ है, जिसने आपको इस बात का एहसास दिलाया है कि ज़िंदगी की इस डगर पर जब वो आपके साथ है तो आप हर मुश्किल रास्ते को बआसानी पार कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा साथी आपके साथ हो तो बस जीने का मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अगर वो साथी अगर आपसे दूर होने का आपको खौफ हो तो ज़िंदगी वबाल बन जाती है। कुछ इसी तरह के जज्बात हमने इस गीत में सुने हैं और महसूस किए हैं। वाकई में जो हमारे सच्चे साथी होते हैं, उनके बग़ैर ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। दुआ यही है कि हमारे साथियों के साथ, आपके हमारे साथियों के साथ, हमारा प्यारा सा साथ हमेशा हमेशा हमारी ता हयात, यानी कि जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक बना रहे, और हम अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। हाँ, तो इसी तरह के इजहार और इसी तरह के ख्यालात के एहसास के लिए हमने आज का उनवान चुना है साथ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा उनवान है, और इस उनवान के तहत हम आज आपको कुछ चुनिंदा नगमे सुनाएंगे। तो आइए अपना रुख करते हैं प्रोग्राम के अगले गीत की जानिब। सुनते हैं कि इस गीत में साथी के बगैर जीना किस कदर दुश्वार नज़र आता है। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत नगमा आपने सुना आया सावन झूम के मूवी से. आवाज़ें थी लता जी की और मोहम्मद रफ़ी जी की. और इस कदर सुपरहिट गीत को आपने सुना, और इस गीत के सुनने के बाद सच में इस बात का अंदाज़ा तो हुआ है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारा साथी होता है उसका साथ सबसे प्यारा होता है, और उसके बिना जी तो बिल्कुल भी नहीं लगता. और दुनिया वाले इस सांस से जलते ज़रूर हैं. खैर, चलिए, आशिक अपने अपने ख्याल इस अलग अलग तरह से बयां करते हैं. हम भी अपने ख्यालात ज़रूर बयां करेंगे. ये सिलसिला चलते रहेगा प्रोग्राम का बराबर. लेकिन अभी हम चलते हैं एक छोटे से वक्फे पर. वक्फे के बाद फिर से ये सिलसिला जारी रहेगा.
1: FM Rainbow 101.9.

दोस्तों, फिल्म वापस से लिया गया ये गीत आपने सुना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गीत सुरीले गाता जा, और हमारी आज की बातचीत हो रही है साथ पर। जी हाँ, ये साथ ही है आपका और हमारा जो कि हमको बांधे हुए है एक डोर में। जी हाँ, तो साथ जो है रिश्तों को बांधता भी है और रिश्तों को करीब करता है, और हमें ये एहसास दिलाता है कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में किस हद तक ज़रूरी हैं, क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल, साथ पर हम जितना कुछ कहें उतना कम है। साथ, जब साथिया का हमारे साथ होता है तो बस बात ही बन जाती है और जीने का मज़ा आ जाता है और दिल कुछ यूं गुनगुनाने लगता है।

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: दोस्तों छोटे से वक्फे के बाद हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुआ जाते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा लिए हुए गीतों का खूबसूरत सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आप हमारे साथ साथ हैं, हम आपके संग संग हैं और संग संग साथ साथ हम कुछ इसी उन्वान पर गीत आपको सुना रहे हैं। तो आइए ये सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत सुनने के लिए।

दोस्तों, उदित नारायण और महालक्ष्मी जी की आवाज़ों में आपने ये खूबसूरत गीत सुना, फलक तक चल साथ मेरे। जब किसी का साथ होता है, वो अपने महबूब का, वो अपने साथी का, वो अपने बिलव का, वो अपने प्यारे से दोस्त का, हम सफ़र का साथ होता है, तो ये दुनिया तो छोटी ही पड़ जाती है। जी चाहता है कि फलक तक भी हम, यानी कि आसमान तक भी हम उसी के साथ चले जाएं।

किसी का साथ होता है वो अपने महबूब का, वो अपने साथी का, वो अपने बिलव का, वो अपने प्यारे से दोस्त का, हम सफ़र का साथ होता है। तो ये दुनिया तो छोटी ही पड़ जाती है, जी चाहता है कि फलक तक भी हम, यानी कि आसमान तक भी हम उसी के साथ चले जाएं। कितना खूबसूरत होता है ना ये साथ, कि हम ज़मीन तो ज़मीन आसमानों की सैर के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ना कोई घबराहट, ना कोई हिचकिचाहट, ना किसी तरह का कोई खौफ। जब इंसान किसी के साथ में किसी तरह का कोई खौफ महसूस नहीं करता बल्कि खुशी महसूस करता है, तो वही हकीकतन सच्चा साथ होता है। तो चलिए, साथ निभाने के लोग के लिए लोग हज़ार बातें करते हैं, हज़ार बातें करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन साथ क्या हकीकतन निभाया जाता है या सिर्फ ये वादे ही किए जाते हैं? आइए सुनते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अगले गीत में, लीजिए सुनिए।

तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। अब वाह, क्या खूबसूरत गीत था! और खूबसूरत क्यों न रहे, आवाज़ ही इस कदर खूबसूरत है कि महेंद्र कपूर जी की एक अनोखी आवाज़, इसका जादू ही कुछ और था, इसमें सुकून ही कुछ और था। और फिल्म थी हमराज, BR चोपड़ा जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म। और इस गीत के खास तौर पर जो बोल थे वो लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। तो इस कदर खूबसूरत बोल, खूबसूरत गीत, म्यूजिक एंड और बहुत सारी चीज़ें, इस कदर खूबसूरत खूबसूरती को एक जगह जमा कर दिया जाए। और खूबसूरत अदाकार और अदाकारा भी, यानी कि सुनील दत्त जी और विमी जी। तो इस तरह जब कोई गाना कंपोज किया जाता है इस कदर खूबसूरती के साथ, तो उस गाने का क्या कहना कि हर दौर में ये खूबसूरती अपनी बिखेरता ही रहता है। वैसे खूबसूरती हम भी बिखेरना चाहते हैं लफ्ज़ों के ज़रिए आप सभी के चेहरों पर। जी हाँ, तो खूबसूरती के साथ मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए। और आगे बढ़ते हैं हमारे फिल्मी गीतों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा। चलिए एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जी हाँ दोस्तों, साथ साथ आपके चलना तो ज़रूर है, लेकिन अब वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इस सिलसिले को हम यूं ही कायम दायम रखें। हमें आपसे इजाज़त लेना ही है। अब इजाज़त लेने का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन इससे पहले हमारे प्रोग्राम की एक और पेशकश बाकी है जिसका नाम है पयाम-ए-शब। आइए समाप्त करते हैं।

प्रोग्राम नैरंग में कल किन प्रोग्राम्स को पेश किया जाएगा। सबसे पहले आप सुनेंगे प्रोग्राम हर्फ ताबिंदा और फिर उसके बाद बेदारी कायनात सिलसिले के तहत आप सुनेंगे तकरीर जिसमें जिसका उन्वान रहेगा उर्दू का समाजी व लसानी मुताला। तहरीर और पेशकश रहेगी डॉक्टर रजिया की और फिर गीत सुरीले गातेजा प्रोग्राम और फिर उसके बाद पयाम शब पर प्रोग्राम का अख्तिताम होगा। और अभी वक्त आ चुका है दोस्तों कि हम आपसे इजाज़त लें, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे हमारे अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। कुछ ही देर में रात के 11 बजने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और अंग्रेजी न्यूज़ सुनेंगे।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की।

0: गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। 11:11 और 4 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं गीत मेरे मनमीत की, राजेश रोशन के संगीत के साथ। लता मंगेशकर की आवाज है, साथ है अमित कुमार का। फिल्म का नाम है बातों बातों में। इसके बाद अगला गीत आप सुनेंगे आर डी बर्मन का संगीत है और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत होगा। आशा जी की आवाज है, साथ है मोहम्मद रफी का, पद्मनी कोल्हापुरी का और ऋषि कपूर का। तो समझ गए ना, जी हाँ, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 11:11 और 44 सेकंड हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।
1: सबके कदम देखो रम पम पम

वक्त मिला ले 11:22 और 20 सेकेंड हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz, गीत मेरे मनमीत आप सुन रहे हैं। अगला गीत है आशा जी की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, फिल्म का नाम है डॉन, और इसके बाद होगा कारवां फिल्म से गीत, लता जी की आवाज है और एक बार फिर से आर डी बर्मन का संगीत है। और आज गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पणा।

गीत मेरे मन मीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:32 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आर डी बर्मन का ही संगीत है और आर डी बर्मन की ही आवाज है। फिल्म शोले से गीत होगा और इसके बाद बप्पी लहरी के संगीत से सजा हुआ गीत होगा और फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। बैक टू बैक इन दो गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर। आज आपके संग है अर्पना और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

11:45 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत।

11:56 हो चुके हैं। ये गीतों का जादू छाया रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा आर डी बर्मन का संगीत होगा, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में, फिल्म हम किसी से कम नहीं। और इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनिएगा समाचार। गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 10 सेकेंड। निशिगंधा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

कभी कभी ना चेहरे का जादू सच में कोई जादू नहीं होता, बस हमारी नजर का धोखा होता है। मतलब सामने वाला वही होता है पर हम उसे ज्यादा खास बना देते हैं अपनी सोच से या फिर अपने प्यार से। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वही चेहरा होता है जो जादू लगता है, बिल्कुल साधारण वही चेहरा जो हमें पहले जादू सा लगता था बिल्कुल साधारण सा लगने लगता है। होता है आपके साथ ऐसा? अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

ये गाना सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जिंदगी थोड़ा स्लो मोशन में चलने लगी है, ना कोई भाग दौड़ है, ना कोई टेंशन लग रही है, बस बारिश है, आपका साथ है और साथ में है कुछ प्यारे प्यारे गाने। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

एक के बाद दो आता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, और बहुत गिनने के बाद शायद अनंत आता होगा। पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे बाद क्या आता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 12:34 और 25 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

वैसे मेरा नाम तो मंजू है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात का समा है, चांदनी रात है और ऐसे में दिल अक्सर थोड़ा सा शायर हो ही जाता है। और जब दिल शायर हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर होती हैं बहुत सारी बातें, पर बातें वही रहती हैं, लफ्ज बदल जाते हैं। अगला गीत अभी के लिए।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 12:50 और 30 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा।

ये तो सच बात है कि जब भी हम आपसे बातें करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो लाखों ख्वाब निगाहों में सिमट कर आ जाते हैं, और उन लाखों ख्वाबों में सारे जो ख्वाब होते हैं वो खुशियों वाले हों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। उसमें से कुछ उदासी वाले भी होते हैं, मायूसी वाले भी होते हैं। तो थोड़ी सी बात रियलिटी की भी कर ली जाए। किसी भी इमोशन का असर हमारे दिलो दिमाग पर तब पड़ता है, तब तक ही पड़ता है जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या हो अगर हम उसे एक्सेप्ट ही ना करें? शायद हम पर कोई असर ही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव थॉट एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो इसका मतलब हुआ कि हम कभी उदासी नहीं होंगे। मैं ऐसे ही थोड़ी कहती हूँ कि मुस्कुराओ, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं, और जब आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं तो फिर मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज़ के साथ।

रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद, संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने, निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद ये फिल्म गुरुदत्त साहब के लिए कामयाब फिल्म रही थी और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म 1960 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण किया था एस ए बागर ने और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। इस फिल्म की कहानी एक सर्जन के इर्द गिर्द घूमती है और ये फिल्म जो है वो अभिनेत्री मीना कुमार के करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हम सुनवाते हैं अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 10 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

नीलकमल फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था रवि का और ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1968 में और इस फिल्म में वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार और ललिता पवार मुख्य भूमिका में थे। और अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत रफ़ी साहब और आयशा जी की आवाज़ में, फिल्म तुमसा नहीं देखा।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के।

वक्त हुआ है 1:51 और 30 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और

0: गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIS से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सार्वजनिक जगहों पर रायसिन नाम के खतरनाक जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वाशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उस पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने इन घटनाओं में किसी भी भूमिका से सख्ती से इनकार किया है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मूज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान जारी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity Kapas Kranti with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality.

इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें, इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, पेड़ों के बाजुओं में महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करें, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, हैरान है कि आज नई बात क्या करें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 42 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ।

इश्क में ऐसा ही होता है, दिल घर बन जाता है और आंखें संसार। इश्क में कभी कभी पागलपन भी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये पागलपन इस गाने तक पहुंच जाए तो फिर सोने पर सुहागा। फिलहाल तो कार्यक्रम और इस पागलपन को, दोनों को आगे बढ़ाने का टाइम है, और सुनते हैं अगला गीत मुकेश, और मुकेश की आवाज़ में।

और मुझे लगता है पूछना चाहिए, क्योंकि पूछने और बताने से दर्द कम हो जाता है। जब बात दीवानगी की चली है तो ये गाना सुनना तो बनता है।

तुम में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबां में बोल कभी। फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबां में बोल कभी। अल्फाज परखता रहता है आवाज हमारी तोल कभी। अनमोल नहीं लेकिन फिर भी, पूछ तो मुफ्त का मोल कभी। खिड़की में कटी हैं सब रातें, कुछ चौरस थी कुछ गोल कभी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर बंजू। वक्त हुआ है 2:34 और 45 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: मुझे लगता है प्यार अगर पूरा है तो फिर पल भर का ही काफी है। एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, ऐसे लगा कि एक जमाना गुजर गया। प्यार को संगीत में सुना है आपने कभी? आइए अगला गीत सुनाते हैं आपको, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, किशोर कुमार की आवाज में।
1: हंसो मत, बोलो।

मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। वक्त हुआ है 2:51 और 13 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365

0: रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम TVK के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,00,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। वहीं अमरीका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत और अमरीका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बहुत करीब हैं। उन्होंने बताया कि समझौते के अंतर्गत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की यात्रा पर ताइवान पहुंचा। ये यात्रा 9 मई तक चलेगी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों के युवा नेता शामिल हैं। मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि अपने यात्रा के दौरान ये नेता ताइवान की सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंग गनबा मेईती पारशांत मोहम्मद ने अपने बेहतरीन जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi on a 3-day visit to India yesterday. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityananda Rai at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, तुझे देखा तुझे चाहा। नजदीकियां भी रखें और कुछ फासले भी रखें, नजदीकियां भी रखें और कुछ फासले भी रखें, हर रिश्ते में नजदीकियों और फासलों का सामंजस्य बनाए भी रखें, पर जब भी लिखे दिखें लड़ने के आसार, पर जब भी दिखे लड़ने के आसार, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। 3:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान होता ही है जिसके बिना हमारा दिल अक्सर नहीं लगता है। कोई हो या ना हो मेरे पास, कोई हो या ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े रहिए अपने दोस्त अर्चित के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:31 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

इस कदर हम थे तन्हा, इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझते हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:38 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: कोई भी इंसान हमें अच्छा या बुरा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें ज़रूरत है तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा, और हमें ज़रूरत ना हो तो वही हमारे लिए बुरा हो जाता है। क्योंकि सूरज हमेशा वही रहता है जो सर्दियों में तो हमें बहुत अच्छा और गर्मियों में हमें उतना अच्छा नहीं लगता। 3:44 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: आज की रात कभी

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। किसी की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए फिर कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए। जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:56 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।

0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट दो प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम TVK के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और नई तकनीकों के कारण हालात जटिल हो गए हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,00,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंगनबा मेईती, पारशांत, मोहम्मद यासिर और निवेश पाल ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। रणवीर को वॉक ओवर से जीत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम

आशा भोसले जी की आवाज में जिंदगी इत्तेफाक है। ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तो पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में गीत तेरे साज का। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। गम है दुनिया में कितने हैं गमगीन, यहाँ पर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लीजिए। 4:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में दूरियां नज़दीकियां बन गईं। 4:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं कुछ और प्यारे प्यारे से गीत।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा चलकर आपको, जाना खुद ही पड़ेगा चलकर आपको, रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:36 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में अभी अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना, जिसके बोल हैं, कोरा कागज़ था ये मन मेरा।

मुकेश जी की आवाज में चल अकेला। हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की चर्चा क्यों करते हो? हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की चर्चा क्यों करते हो? बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो? परेशानियां तो होती ही हैं सभी के पास दो चार, परेशानियां तो होती हैं सभी के पास ही दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों दिखते हो? 4:49 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज़ में दिल ने दिल को पुकारा। 4:54 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ

साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथित बयान पर कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

जन्म जन्म का साथ है। जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए। जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए। निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को।

उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। 5:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किसी होनहार प्रतिभावान व्यक्ति से जुड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए। किसी होनहार प्रतिभावान व्यक्ति से जुड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए। उसके सफलता के शिखर पर पहुंचने का इंतजार ना करें, क्योंकि आप उगते हुए सूरज से तो नजरें मिला सकते हैं, पर दोपहर के तेज सूरज से नहीं। 5:22 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

0: निकलोगे बाहर तो कुछ मुश्किलें तो उठाओगे, निकलोगे बाहर तो कुछ मुश्किलें तो उठाओगे, घर पर बैठे सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाओगे। दो चार कदम चलकर तो सभी थक जाते हैं यहाँ पर, दो चार कदम चलकर तो सभी थक जाते हैं यहाँ पर, लगातार चलते रहो, एक न एक दिन मंजिल पर पहुँच ही जाओगे। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: जब